बेगम अख्तर की आवाज में सुदर्शन फाकर की लिखी ये ठुमरी आप सुन रहे थे। और इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया था उमराव जान फिल्म का नगमा। आशा भोसले की आवाज थी, शहरयार के बोल खयाम की तर्ज थी।

0: सदियां इस एल्बम में आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा और साबरी ब्रदर्स की आवाजें, समीर के बोल थे, अदनान सामी की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: तर्जर आवाज अदनान सामी की थी। समीर का लिखा ये गीत आपने सुना तेरा चेहरा एल्बम से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर की आवाज में बालकवि बैरागी की रचना आपने सुनी। जयदेव का संगीत था, फिल्म थी रेशमा और शिरा।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

संतोषी की रचना आपने सुनी हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी पोस्ट बॉक्स नंबर 999। और इसके पहले जो गीत आपने सुना आशा भोसले मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें थी। फिल्म थी कब हुई गवनवा हमार।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी का लिखा यह गीत आपने सुना। सी रामचंद्र की तर्ज थी, फिल्म थी शिनशिना की बुबला बो। और इस गीत के पहले श्रोताओ, हमने आपको सुनवाया था जो गीत हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी, पीएल संतोषी की रचना थी, एन दत्ता का संगीत था।
1: आज मौसम सलोना सलोना रे, आज मौसम सलोना सलोना रे।

हजारों दीपक वाले जगमग जगमग हो गया मेरे मन का कोना कोना रे मन का कोना कोना रे मौसम चलो ना रे हाँ चलो ना रे

0: തമ്മിലേ ചമ്മേ ചമാചം മേരെ തമ്മിലേ ജയമേ ചാന്ദി സോനരേ അതി മോഹം സലോനാ സലോനരേ ആ സലോനരേ
1: कवि प्रदीप की रचना थी सरस्वती देवी की तर्ज थी। अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में आपने सुना फिल्म झूला का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी की रचना आप सुन रहे थे। शिवराम कृष्णा का संगीत था इस गीत में। तीन बत्ती चार रास्ता इस फिल्म का गीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह।
1: मुझको हुई ना खबर।
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं,
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, आप सुनेंगे थोड़ी देर में कार्यक्रम सुरीला सफर।

रेडियो द्वारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सूरज ढलने के बाद एक शमा हमें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाती है। जब अंधेरी रातों में जी घबराता है, शमा अंधेरों को चीरती रोशन होती है और अंधेरों से लड़ना सिखाती है हमें। कहीं इश्क मोहब्बत, कहीं इंसानी इल्म और समझ का रास्ता दिखाती है न सिर्फ शमा, बल्कि वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग जो हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आते हैं, शायद शमा की ही तरह हैं, बेशक शमा की तरह हैं। और जिंदगी में अगर परवाने की बात की जाए तो परवाने की तरह हमारे लक्ष्य सधे होने चाहिए, चाहे रास्तों में कितनी भी अड़चने आए। और इसको ही लेकर एक इबारत हमने आज www.facebook.com/vbsmumbai के इस पते पर पोस्ट की है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसे पढ़ा भी है और हमारे नए श्रोताओं के लिए या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये इबारत हम पढ़ देते हैं एक बार। शाम ढलते ही दरों दीवार पर शमा रोशन कर दी जाती है। अंधेरी रात के साए जब घरों और महफिलों में शमा रोशन होती है, चेहरे पर चांदी सी बिखर कर पास बिठाती है और कहती है, मेरे महबूब, दो हंसों के जोड़े की तरह हम शमा परवाने इल्म की रोशनी, सच्चे प्रेम और समर्पण की दास्तान है। देखो ये रात ढलती जाए है लेकिन वो चुप रहे, प्यार की आबरू कुछ जफाओं कुछ वफाओं की खातिर। परवाने ने कहा, प्यार तो दीवाना होता है, तू शमा मोहब्बत की रोशनी के लिए जली, एक लक्ष्य एक जुनून की मिसाल बनी। आज की रात जो बसर हो गई, तेरी आगोश में जलने को फिर आऊंगा, सदियों पुरानी ये मिसाल फिर दोहराऊंगा। शमा तड़प कर बोली, मिटने की तकदीर तो दोनों की है, मेरे महबूब आज की रात तो न जा। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

महिपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, इंदिवर के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आमतौर पर शम्मा परवानी की दास्तान को आत्मघाती आकर्षण का रूपक माना जाता है, लेकिन आज की इबारत में शम्मा को इल्म की रोशनी और एक लक्ष्य का प्रतीक बनाकर प्रेम को उच्चतर अर्थ दिया गया है। परवाने का शमा की ओर खिंचाव महज अंधा मोह नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य के प्रति एक सजग जुनून है। एक और श्रोता ने लिखा है, इस इबारत में प्रेम की गहराई, विरह, इंतजार, जफा, वफा और शमा परवाने के प्रतीकात्मक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इल्म की रोशनी, लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण का संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत खूबसूरत है, इस बेहतरीन लिखावट में छुपे शब्दों के आधार पर आज सुरीला सफर में ये सदाबहार पुराने नगमे हो सकते हैं। शमा परवाने की बात है और कुछ गीत भी इन्होंने बहुत सारे गीत सुझाए भी हैं और भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने शमा परवाने के बारे में लिखा है। वैसे आपको बताएं श्रोताओं कि शमा शब्द पर जाने कितनी ही कविताएं लिखी गई, जाने कितने ही शेर, जाने कितने ही अल्फाज और उद्गार बताए गए। दुनिया बदली, दौर बदले, लेकिन शमा उसी शान और शौकत से आज भी जलती है। आपको कलाकार और फिल्म बताने हैं।

इससे पहले जो अलबेला का गीत, फिल्म अलबेला का गीत हमने आपको सुनाया, भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और ये गीत था पुनर्मिलन फिल्म से अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामू की बारात बैलगाड़ी में गई थी तो बहुत मजा आया था जब मैं छोटी थी। यानी कि बैलगाड़ी में अगर कोई रास्ता ऐसा होता है श्रोताओं, तो उसमें जरूर रोशन होती है क्षमा किसी लालटेन के तौर पर या चिमनी के तौर पर। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा परवाना, दीपक पतंगा और ढलती हुई रात, इनका रिश्ता बिना शर्त मोहब्बत, त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। इस गहरे और रूहानी रिश्ते ने सभी को आकर्षित किया है। ये कोई साधारण जलना नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि लो दीपक की जलती है राह दिखाने के लिए, परवाना मचल जाता है खुद को मिटाने के लिए। जी हाँ, रिश्तों में भी ठीक ऐसा ही होता है कि रिश्तों में आजकल समर्पण कम देखने को आता है। तो इस बारे में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जो पढ़ाई जब हम कभी करते थे तो क्षमा की रोशनी में अक्सर पढ़ाई की जाती थी, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि क्षमा जलती रही अपनी रोशनी में, परवाना मिटता रहा उसकी चाहत में, इश्क भी कितना अजीब है जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसी पर दिल सबसे ज्यादा आता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्षमा केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, समर्पण और उम्मीद की मिसाल है। क्षमा की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला बड़ा होता है, दूर तक प्रकाश फैलता है। इंसान कभी अगर अपने भीतर की अच्छाई, प्रेम और संवेदना की लौ जलाए रखे तो किसी के जीवन का अंधेरा कम कर सकता है। शायद इसीलिए क्षमा हमेशा से उम्मीद, प्रेम और त्याग का खूबसूरत प्रतीक रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है श्रोताओं, कि हृदय में हमेशा, दिल में एक क्षमा जलती रहनी चाहिए। ये दो अभिनेत्री कौन हैं और ये किन के बारे में बात कर रही हैं?

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का। शकील बदायूं का लिखा। एक श्रोता ने लिखा है, बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम हीरामन हीराबाई को लेकर फरबीजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म और बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखती हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहां की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप हैं, जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डरकर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं?

की रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर, और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैम्प पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गांव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोताओं और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवानी की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी है बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवाने के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा, फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब नजा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार, वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवानी की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक शमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई शमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और शमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, मीना मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती है कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। हम पांच भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पानी का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है, मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है, दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है। पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सफलता तक पहुंचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना तो रात के 1-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडी को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
2: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
2: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और कश्मीर के जो व्यंजन है इनकी बात होगी। तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
2: पहले गीत सुन लेते हैं।
3: ना ये जमीन थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है।

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भाई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है।
1: बिल्कुल, ये उन दिनों की बात हो गई ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा हमारा जन्म से अधिकार है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है, और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं और सहवाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर के क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
0: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार यह दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है
1: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है।
2: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के।
3: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था।

0: हो? अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
1: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
1: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा।
0: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये लो ये लो 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
1: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
1: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
1: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां न आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
2: बाबू साहब, उफ, बाबू साहब।
1: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
2: नहीं।
1: मियां राहत ने ठंडी सांस ली, तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
2: हाँ।
1: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली, अरे भाई कुछ बदलाते क्यों नहीं, कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
2: बाबू साहब उस दिन की बात तो आपको याद है ना, जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
1: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
2: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
1: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
2: हैं? बाबू साहब यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
1: अरे तो फिर इससे क्या?
2: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
2: बाबू साहब ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है, इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब,

0: आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
0: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूँ।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
0: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा कलुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? ले नौकरी छोड़ने का मजा, ले मजा ले।
1: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
0: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है।
1: हाँ, तो लेते हैं, अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत। ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध हैं, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष

0: 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी, तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है, और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं, ये

0: जरा सुन हसीना नाज़नी।
1: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है।

0: और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
1: बिल्कुल, इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
0: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते हैं।
1: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना, तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर।
1: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं, बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
0: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
1: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूं उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है
1: ममता जी, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे।

0: आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताजा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबालकर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें, और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है, और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है, उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो है वो तैयार है।
1: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हम इन्हें पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाए या गाना सुनवाए, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।